ये पाई पाई ओ आ रही थी तो ये पुनः ये ओ मुरी भाई ओ पुरे ओ ये मराए करो ये तो तोरो ये और बन ओ तकु कोरेरो माउरी थे ये कोरेरो ये तुम दे वारो